बस बनता फिरे धुरंधर रहता है अपने में, दिल समझे नहीं पतंदर रहता है अपने में, बस बनता फिरे धुरंधर रहता है अपने में। हाँ, सच के दिखाएगी हाँ, हंस के बुलाएगी हाँ, रच के न

0: नीचे टक टक बजती जो डांस फ्लोर पे जब तू नाचे आंखें मीचे आंखें मीचे आंखें मीचे आंखें मीचे आंखें मीचे
1: स्पीकर का वॉल्यूम उसको तेज पसंद है बेबी को बेस पसंद है जब वो नाचे मुझको उसका फेस पसंद है बेबी को बेस पसंद है।